Photography is a hobby, Darshan, not a career. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

भगवान का घर है हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से। सुन वालों, आज बुधवार का दिन है, आप सभी सुन वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 032-65-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032-62-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। सुनने वालों, यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS की जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो सीयू का नाम हरिहरन के आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से वेलकम स्वागत किया जा रहा है और रेडियो SBS की जरिए भजन यात्रा प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आज बुधवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में एक सुंदर भजन होगा अनुराधा पोटवल जी की आवाज में।
1: कांवरिया भगवान सदाशिव से प्रार्थना करता है, हे प्रभु अब की बार हमारी खाली झोली भर दो, अगले बरस हम फिर कांवर लेकर आएंगे। ये उच्चारते हुए भाव विभोर भक्तों की भीड़ प्रभु दर्शन के लिए उमड़ पड़ती है।

रेडियो SBS के जरिए अनुराधा पोटवल जी के आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। आसरो मीठे सुंदर भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया है। चले अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए नरेंद्र चंचल की आवाज में। ये सुंदर सा भजन सुनते ही रहे।

रेडियो एस बी एस के जरिए नरेंद्र चंचल की आवाज में सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11 और बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं। रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए रेडियो SBS.NL के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं दुनिया की कोने कोने में और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है।

0: दिन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में, और ये प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: रूपी कांवर कब टूट जाए, इसीलिए भक्तिन प्रभु के साथ साथ रहना चाहती है।

रेडियो वेव्स में इसकी जरिए सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में और पेश हुआ है चंदना दीक्षित की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन। हम आपको ले चलेंगे अब की बार शर्मा जी की ओर और पेश किया जा रहा है ये सुंदर भजन आज की प्रोग्राम।

में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। आपको हम ले चलेंगे आपकी बार हरिओम शरण जी की ओर। एक सुंदर भजन आज की सुबह के प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए।

भजन हरिओम शरण जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस भी इसकी गई और रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं आरती भजन की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। सुंदर सा आरती भजन बस प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS के जरिए सुंदर सा गणेश जी का आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, यहाँ तक भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। आशा उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से आप सभी सुनने वालों को, सभी भक्त प्राणियों को शुभ और शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis, ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt

अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। 8:00 प्रोग्राम में 14 मिनट व्यतीत हो चुका है, फिर 3 मिनट ओवरऑल स्टूडियो तहत। आज बुधवार का दिन 9 सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मौसम आज का भीजा भीजा सा मौसम होने वाले हैं, कहीं कहीं जोर तोर से बारिश होने वाले हैं। फिर भी आप सभी सुनने वालों को एक खूबसूरत और सुहाना दिन। सभी सुनने वालों जो देश विदेश में हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को भी वेलकम स्वागत किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हॉलैंड से शहर यूट्रेक्ट से ये प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। तकरीबन 9 बजे से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी और हमारी सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है उन सभी को भी वेलकम, गुड मॉर्निंग और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। दुलारा फिल्म का नाम, द टाइगर ऑफ इंडिया, कुमार सानू एंड अलका।

प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में 9:30 स्टूडियो तैयार हो चुका है। शुक्रिया प्रोग्राम में द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स रेडियो SBS।

के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में के आवाज में एक और खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। साथ में होगा बेला, जरूर आप सुनते ही रहना।

सेंदे की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मौसमी समाचार से खबर मिलते है कि सुबह की वक्त, दोपहर की वक्त और शाम की वक्त में कहीं कहीं जोर तोड़ से बारिश का मौसम होने वाले है। फिर भी आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो वेस में इसका प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना।

ले चलते हैं फिल्म का नाम एक हिंदुस्तानी, उदित नारायण एंड अलका। चोरी चोरी दिल दिया था, इट इज इनमिडल्स 11 मिनट ओवर हाफ 9 स्टूडियो टाइम हो चुका है और आप रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स

स्मेरी, ये गाना बस पीछ की गई गैर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। शेड्यूट्रैक से रेडियो SBS का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में एक गाना और होगा, उसके बाद खबरें, खबरें के बाद पुरानी फिल्में, संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो जरूर जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू एक बार फिर से प्रोग्राम में साथ में होगा। आलकम नतीजा हमारी मोहब्बत का, नतीजा हमारी मोहब्बत का, खौफ फिल्म का नाम।

सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम हर सुबह आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, और बहुत से सुन वाले होते हैं जो इस प्रोग्राम को गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ हमेशा बस सुनते हैं। तो सबसे पहले आप सभी सुन वालों को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। यहाँ से हम आपको ले चलते हैं पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर। पहला गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुन वालों की सेवा में एक काफी प्यार भरी गाना होगा।

आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। रेडियो SBS का जो पेश किया जा रहा है, एक बार फिर से मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। एक गाना जो झनकार म्यूजिक में

पुरानी फिल्म मॉडर्न इंडिया का गीत भी इसके गए शमशाद बेगम के आवाज में। ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में। खूबसूरत पुरानी नगमे आप सब ही सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम भी इस वक्त सुनते हैं। यशुदास एम प्रीति सागर प्रोग्राम में।

आनंद आश्रम उसी फिल्म का गाना पेश की गए यशुदास और प्रीति सागर की आवाज में। ये खूबसूरत प्यार भरी गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। चले प्रोग्राम में आशा और मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, नतीजा हमारी मोहब्बत का।

मुकेश जी और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था रास्ते का पत्थर। उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए मुकेश और लता की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

थैंक्स और लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था राखी। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60 इसी टारगेट नंबर पर टेलीफोन नंबर पर सभी और सभी इन्फॉर्मेशन इन्फो आप ले सकते हैं। लता मंगेशकर

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों एक गाना और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम है

गाना प्रोग्राम में लता जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए अब की बार किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। किशोर कुमार प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम आन मिलो सजना।

जी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार फिल्म राम बलराम, उसी फिल्म का एक गाना बस पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में।

आशा भोसले की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

कैनबस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में खूबसूरत गाना भी आपने सुना। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66611 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0322-65-65-60। किशोर एंड लता मंगेशकर प्रोग्राम में

0: रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: समझो ना।
0: क्या समझू?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।

किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और वो भी गीता दत्त की आवाज में। गीता दत्त की आवाज में अब की बार ये गाना बस प्रोग्राम में सुनते ही रहना।

गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में तलत जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं।

हार्ट ऑफ रेबेलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

और सभी सुनने वालों की सेवा में, कौन सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है और प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे

और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। चलिए अब की बार हम आपको ले चलते हैं गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना होगा फिल्म नील कमल, मोहम्मद रफी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बस पेश किया जा रहा है सभी सुनने वालों की सेवा में।

नील कमल गाना बजुर्गों में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में अब की बार मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में जरूर सुनते ही रहना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है। उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार उदित नारायण और अलका जी की ओर। एक और काफी खूबसूरत प्यार भरी गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। वेबसाइट होता है radio.sbs.com। उदित नारायण और अलका के बाद एक और काफी खूबसूरत प्यार भरी गाना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में अब की बार ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आसरों मीठे की सुनकर और बेहद पसंद करेंगे।

साधना सरगम ने फरमाया आज की प्रोग्राम में। चले प्रोग्राम में सोनू निगम एंड अलका जी की ओर। सोनू निगम एंड अलका

सोनू निगम और अलका जी की आवाज में गाना परदेसी बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। 030-262-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। गाना जो आपके बार पेश होगा कविता कृष्णमूर्ति एंड सोनू निगम की आवाज में। सभी हितनक में रेडियो SBS की जरिए बस पेश किया जा रहा है संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS।

Je programmy Písni dej Radio SBSky 7. Šer Utrechtsi je programma Sabhi Sunvalu ki seva me bas Písni aja raha hai chale Kumar Sanu and Sadhana Sargam ki or. Maine kaha na sabhi hit gaane इसी रेडियो स्टेशन की जरिए बस पेश किया जा रहा है संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS. की जरिए बस पेश किया जा रहा है संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS.

सरगम के आवाज में ये खूबसूरत गाना बस पेश की गई है। सुनो वालों, हर एक कामों काज के लिए रेडियो एस बी एस का टेलीफोन नंबर है 0325656566। अभिजीत औरल का प्रोग्राम है।

अभिजीत और अलका की आवाज में ये गाना पेश की गई मेरी चाहतों का समुंदर तू देखो।

ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा। उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए आतिफ असलम और सुमेधा प्रोग्राम में।

खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना लाइव की जरिए प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अलका जेके आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

सोनू निगम और खासतौर पर श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा, उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले अब की बार आपकी सेवा में ये गाना पेश किया जा रहा है, अक्रूस फिल्म का नाम

अलका जी के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चलिए आज की इस प्रोग्राम में गाना है तो फिल्म आंखों में तुम हो, कुमार सानू और अलका जी के आवास में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं के की आवाज में। आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रिलीज किया गया है। उसी फिल्म का गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार अदनान सामी और महालक्ष्मी आयर की आवाज में फिल्म खुशबू का गीत पेश किया जा रहा है। जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60। मोहम्मद इरफान एट द फिल्म किक ये गाना पेश किया जा रहा है।

सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति प्रोग्राम में।

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के बाद सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, पहली नजर का पहला प्यार। फिल्म का नाम उसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना पेश किया जा रहा है सोनू निगम और सुनिधि चौहान के आवाज में।

नजर का पहला प्यार फिल्म का नाम सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरों मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। अभिजीत की आवाज में आज के प्रोग्राम में एक और खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है

मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में फिल्म गंगा जमुना उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में अगली बार पेश किया जा रहा है। गाना का बोल है ओ छलिया रे छलिया मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर है प्रोग्राम में। फिल्म का नाम गंगा।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई एक फिल्म जिसमें दिलीप कुमार और विजयंती माला ने काम किया, गंगा जमुना फिल्म का नाम, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। 1961 का फिल्म 1961 का खास फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले शमशाद बेगम की ओर, और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म मॉडर्न इंडिया की।

रेडियो SBS की सर। ये पुरानी फिल्म बॉर्डर इंडिया, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई शमशाद बेगम की आवाज में अभी आपने सुना। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले अब की बार फिल्म राम और श्याम की ओर, मोहम्मद रफी और आशा प्रोग्राम में।

पुरा फिल्म राम और श्याम, उसी फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गए। चले अब की बार तलत महमूद और लता मंगेशकर की ओर हम आपको ले चलते हैं।

उदो रे लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे लता मंगेशकर की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में। बस पेश किया जा रहा है जरूर और जरूर सुनते ही रहना फिल्म लव इन टोक्यो। उसी फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज में एक बड़ी ही खूबसूरत प्यार भरी गाना लाया गया है, मुझे तुम मिल गए हमदम सहारा हो तो ऐसा हो। लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी लव इन टोक्यो।

लता मंगेशकर की आवाज में। ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम लव इन टोक्यो। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शेडुट्रेक से हॉलैंडी से। ये प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश और लता मंगेशकर अब

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है रेडियो SBS.NL, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, मोबाइल फोन के जरिए, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चले फिल्म नागिन की ओर। स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, ओ जिंदगी के देने वाले।

स्वर्गीय हेमंत कुमार, हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना बस पेश की गई पुरानी फिल्म नागिन का गीत अभी आपने सुना। रेडियो SBS की सरिये आज की ये प्रोग्राम में ये गाना हेमंत कुमार की आवाज में पेश हुआ है। महेंद्र कपूर और आशा प्रोग्राम में महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में अब की बार ये खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है। गुमराह फिल्म का नाम, उसी फिल्म से ये गाना

अच्छा जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई गुमराह फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में जो पेश की गई है। अब की बार हम आपको ले चलेंगे किशोर और लता मंगेशकर की ओर। किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम कभी कभी।

रेडियो SBS की जरिए फिल्म कभी कभी, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। हम आपको ले चलेंगे मुकेश और लता जी की ओर। फिल्म का नाम दुल्हा दुल्हन, उसी फिल्म का अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुन वालों की सेवा में मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में दुल्हा दुल्हन फिल्म का नाम चले अब की बार मन्ना डे की ओर। और मन्ना डे

0: पनवड़िया तो कन्या
1: उड़ बैठी पनवड़िया तो
0: कन्या उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या अरे बीड़ा के सब रस ले।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशलि क्रमणाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशलि क्रमणाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

लीना और लीना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म स्वर्ग नरक से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है महबूबा महबूबा फिल्म अजनबी से।

सोना नहीं चांदी नहीं यार न मिला, अरे प्यार कर ले, इस द फिल्म शुक मंगल सावधान एंड इसके संग दूर बप्पी लहरी आयुष्मान खुराना एंड आंद्र। गाँव द फेदर मैट अर द फिल्म हम दिल दे चुके सिनम, हम दिल दे चुके सिनम, द टाइटल सॉन्ग दिस।

0: bandhen hai Payal ne machaya shor was uit de film Mohabbate. Het volgende liedje is ook uit de film Mohabbate en het is Aankhe khuli ho ya ho band, didaar unka hota hai. Kaise kahu main o yaara ye pyar kaise hota hai.
1: Ek ladki thi deewani si, ek ladke pe wo marti thi. Nazrein chuka ke, sharma ke, galiyon se guzarti thi. चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी. कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है. और मैं सिर्फ यही कह पाता था.

मुझे रंग दे इसको समुद्र। आशा भोसले एंकवा मैं द फिल्म तक्षक एंड द एल्बम दुनिया जिसे कहते हैं कम थो समुद्र जगजीत सिंह। कल चौदहवीं की रात थी।

की कशिश इज द फिल्म आशिक बनाया आपने एंड इज गजोंगे डोर ही मिश रेशमिया एंड गजोंगे डोर राहुल मिश्रा कॉम्ट आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड तू ही है।

वारजीत जीत सिंह एंड चित्रा सिंह मैथ। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। दित प्राप्त लीजिए सुसंग दो जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह। फोन लीजिए सो सुसंग दो जगजीत सिंह एंड कम दे सकेर आय द फिल्म अर्थ। झुकी झुकी सी नजर, दिल में प्यार है कि नहीं।

अच्छी लगती है. इसका समुद्र अनुराधा श्री राम एहसान एंड क्वाम आउट द फिल्म वादा एंड आउट द फिल्म जोया फैक्टर कॉम्स माहिरू.

ये नयन धीरे धीरे आपने सुना हेमंत दा की आवाज में फिल्म कोहरा से। और अब आप सुनिए प्रोग्राम गीतों के लहर में अगला गाना फिल्म खामोशी से। वो शाम कुछ अजीब थी।

वल्ला आपने सुना फिल्म पागलपंती से, और अब आप सुनिए अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में फिल्म तेरे नाम से। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आँखें हैरान सी रह जाती हैं।

सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए। अलका याचिनी की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, अली असमत की आवाज में फिल्म जिस्म 2 से, मौला मौला।

तुझ में क्या है दीवाने, खसोंद और किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर kwam uit de film बड़े दिल वाले. हाँ, तो फेर्दर मैट uit de film मलंग. हमरा इस लीचे.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

वास्तव द फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं, छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। इसका सॉन्ग दौर उदित नारायण एंड अलका याचनिक। इन प्रोग्राम गीतों के लहर से फोहत लीजिए बंधु मेरा द फिल्म जवान जाने बन।

आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। ये बेहतरीन गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ पे फिल्म अनपढ़ से, और अब आप सुनिए फिल्म देवदास से उदित नारायण की आवाज़ में वो चांद जैसी लड़की।

मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम, बस अयोध्या फिल्म हमको दीवाना कर गए। अयोध्या फिल्म फना कोमदा खसंग दौर कैलाश खेर एहसान चांद सिफारिश जो करता हमारी।

तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो

अभी अभी आपने सुना के की आवाज में फिल्म जिस्म दो से, और अब आप सुनिए फिल्म शोर इन द सिटी से श्रेया घोषाल और तोची रैना की आवाज में साइबो।

काला भी स्काई, फिल्म द स्काई इज पिंक से आपने सुना। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए दिल विल प्यार व्यार से। हरी हरन और अलका याचनिक की आवाज में आप सुनिए तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।